0: के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से पांच देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma will be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office in secrecy at a ceremony to be held at the Vet.

0: गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवासरात आरभ्य संयुक्तारबामीरात नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां षड्दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्री मोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री शुक्रवासरे नीदरलैंड देशं सम्प्राप्स्यति। 17,2000 वर्षे स्वान्तिम यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैंड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिक वार्तां करिष्यति। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामी यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत विश्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असम राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असम राज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं शर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 30 पराजितम् इति वार्ताः।

0: श्रोताओं, प्रकृति ने कभी उस इंसान के साथ छल नहीं किया जो उससे प्यार करता है। इसलिए प्रकृति को प्यार दें, इसके संसाधनों को संजोकर रखें, क्योंकि इन पर जितना हक हमारा है उतना ही हमारी आने वाली पीढ़ी का भी है। इस सकारात्मक विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आज सवेरे के आज के अंक की। मैं हूं सर फिरोजी और मेरे साथ हैं वीसी प्रमोद। गुड मॉर्निंग प्रमोद।
1: Good morning, Sir Firozi, and a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the entire Akashwani network. We bring for you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 12th of May 2026.
0: और काफ़ी कुछ जैसा आपने बताया प्रमोद होने वाला है प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर।
1: That's right.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था

0: पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है।
2: That's right. Assam is set to witness a historic political event today with the swearing in of Himanta Biswa Sarma as the chief minister of the state for a second consecutive term, making him the first non-Congress leader in Assam's history to hold the post for back-to-back terms. Dr. Sarma and his council of ministers will be administered the oath of office in secrecy by Governor Lakshman Prasad Acharya. We have a report.
3: Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, four other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The four cabinet ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several Union Ministers and Chief Ministers of BJP-ruled states. The Veterinary College ground at Khanapara in Guwahati has been fully decorated to host the swearing-in ceremony. Elaborate arrangements have been made at the venue in view of the large gathering expected for the event. The Kamrup Metro District Administration has also issued traffic advisories in several parts of the city to avoid congestion and ensure smooth movement of vehicles. Rakesh Dole, Akashwani News, Guwahati.
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी।
2: Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to the UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach the UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links.
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्यकर जीवन शैली को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति सरकार की सक्रियता दर्शाती है। उन्होंने रोकथाम, शुरुआती पहचान और सक्रिय देखभाल के साथ किफायती और उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच बढ़ाने पर बल दिया। श्री नड्डा ने प्रभावी पहल के लिए विज्ञान, नीति और कार्यान्वयन के समन्वय पर जोर दिया।
4: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिनम ऑफ केयर पर।
2: US President Donald Trump has said the ceasefire with Iran was at its weakest and on massive life support a day after he rejected Tehran's proposal to end the months-long war as totally unacceptable. In response to a question on the ceasefire with Iran in the wake of the rejection of the peace proposal, Trump told reporters at the Oval Office that it is at its weakest. After reading that piece of garbage they sent, it's on life support. Massive life support, he added. During an event on maternal health care at the White House, Trump asked the participants to keep their remarks short as he had a meeting with a large group of generals on the issues of Iran.
1: और श्रोताओं अब रुख कर रहे हैं खेलों का। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
2: Staying on with sports news, in Bangladesh, a 3-member inquiry committee

0: has been constituted to probe the reason behind the national cricket team's withdrawal from the ICC Men's T20 World Cup in India. According to an official government order dated the 10th of May, former Additional Secretary Dr. A.K.M. Oliullah will head the panel, which also includes former Bangladesh captain and current chief selector Habibur Bashar and Supreme Court lawyer Faisal Dastagir. The committee has been asked to submit its findings within 15 working days.
1: प्रमोद, हमने अपने श्रोताओं को देश दुनिया की तो खबर दे दी, अब वक्त है कि रुख कर लिया जाए अपने महानगरों की ओर.
0: एब्सोल्युटली, एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम द साउथ.
1: बिल्कुल.
0: सो आई विल स्टार्ट विद चेन्नई. The Atomic Energy Regulatory Board has approved the restart and continued operation of Unit 2 of the Tarapur Atomic Power Station on the 7th of this month, following the successful completion of a major refurbishment work undertaken under the Nuclear Power Corporation of India Limited. TAPS Unit 1 and 2, India's first nuclear power reactors, based on the boiling water reactor design, commenced commercial operation in 1969. The refurbishment included complete replacement of reactor coolant recirculation piping with forged piping and fittings made of advanced corrosion-resistant stainless steel. The other safety upgrades included commissioning of reactor containment filtered venting system, the alternate cooling water system, and other things. Further, during the ongoing outage, inspection of critical reactor components such as the reactor pressure vessel wells were carried out towards assessment of aging status and residual life assessment. The evaluations have shown that the reactor can continue safe operation with the normal maintenance and surveillance program. Sarfirozi, aap hame kaha le ja rahe hain?
1: Ye program Delhi se hi broadcast ho raha hai. Pramod, to sabse pehle baat karenge apni rajdhani ki.
0: Okay.
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री सोमनाथ की भव्य यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस अवसर पर मंदिर की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित किया गया. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की आस्था, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि ये विश्व को सनातन संस्कृति की अमर शक्ति और उसके पुनर्जागरण का संदेश देता है. और प्रमोद, मेरे पास एक और खबर है राजधानी दिल्ली से ही.
0: बिल्कुल.
1: दिल्ली सरकार ने धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सभी निर्माण और तोड़फोड़ यानी CND साइट्स पर लगभग 100 GSM मोटाई वाले ग्रीन नेट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं और इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार सख्त नियम, तकनीक आधारित निगरानी और वैज्ञानिक उपायों से प्रदूषण कम करने पर काम कर रही है. और प्रमोद, हमारा अगला महानगर कौन सा है?
0: बेंगलोर.
1: बिल्कुल.
0: जिसका नाम अभी बेंगलुरु हो गया
1: जी.
0: है, राइट. अ स्पेशल पर्पस व्हीकल बाय राइड फॉर्म्ड अंडर द के राइड टू इंप्लीमेंट द बेंगलुरु सबर्बन रेल प्रोजेक्ट BSRP हैज इश्यूड अ वर्क ऑर्डर टू द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई टू सप्लाई 153 एयर कंडीशनड ब्रॉड गेज मेट्रो टाइप कोचेस रिक्वायर्ड फॉर कॉरिडोर 2 and 4 ऑफ द सबर्बन रेल प्रोजेक्ट. सरफरोजी, ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है बिकॉज बेंगलुरु में इतना ज्यादा ट्रैफिक है
1: जी,
0: कि ये जो सबर्बन,
1: हम मीम भी बहुत देखते रहते हैं कि मैं रील स्क्रॉल करती हूँ तो उसमें अक्सर काफी जो है फनी सरकैज़म, बहुत मजाक एक तरह से उड़ाया जाता है बेंगलुरु के
0: ट्रैफिक का. इनफैक्ट मैंने एक रील देखा था, उसमें ये था कि दिस इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे अगर आप गूगल मैप्स लगाओ तो वॉकिंग विल बी फास्टर देन गोइंग बाय कार. So this is a very good initiative by the government. They're starting a suburban railway project to decongest Bangalore. So the coach factory in Chennai has to commence the supply of the coaches within the next 18 months, was told by PM Modi. This is in line with ensuring that the required train coaches are available by the time the track and systems infrastructure work for Corridor 2 and 4 are completed. During the Pragati review meeting held in December 2025, Prime Minister Modi had set this timeline for the suburban rail project to decongest Bengaluru.
1: और प्रमोद, उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है जल्द से जल्द पूरा हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है.
0: बिल्कुल, एब्सोल्युटली.
1: और अब रुख कर रहे हैं शहर मुंबई की ओर. मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड

0: सेंटर और अखिल भारतीय उद्योग संघ ने इक्वाडोर गणराज्य में भारत की राजदूत अनीता शुक्ला के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें दोनों देशों के बीच सहयोग के उभरते अवसरों पर चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए सुश्री शुक्ला ने कहा कि इक्वाडोर खनन, पेट्रोकेमिकल्स, अवसंरचना, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, विमानन, फिनटेक और डिजिटलीकरण जैसे क्षेत्रों में भारत कंपनियों के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। अखिल भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष डॉ. विजय कलांत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच कच्चे तेल और कृषि उत्पादों के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग उपकरण और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है, जबकि हरित ऊर्जा, कृषि तकनीक, AI, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल नवाचार में सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।
1: मूविंग ऑन टू हैदराबाद, Telangana Chief Electoral Officer CEO Sudarshan Reddy has directed district election officers and collectors to ensure that 90% of the special intensive revision SIR mapping is completed by the end of this month. During a video conferencing held from his Hyderabad office with DEOs and EROs, the CEO emphasized the need to accelerate the mapping process ahead of the upcoming special revision announcement by the Election Commission of India. He urged officials to involve residential associations and gated communities in the mapping process, suggesting that government employees and the public should voluntarily coordinate with booth-level officers, BLOs. To facilitate this, he requested the setup of help desks and the involvement of self-help groups and ration shop dealers.
0: और प्रमोद अब रुक कर रहे हैं अपने आखिरी महानगर की ओर, कोलकाता की ओर। हमने हाल ही में देखा कितना, किस तरह का चुनावी घमासान हुआ पश्चिम बंगाल में, और अब वहाँ की नई राज्य सरकार ने सोमवार से अपना कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की और प्रशासनिक और कानून व्यवस्था संबंधी बैठकें की। मनोज अग्रवाल को राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई तबादले भी किए गए हैं। एक अन्य घटनाक्रम में आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित कई केंद्र सरकार की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू करने की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि 45 दिनों के भीतर भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन आवंटित कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने बताया कि राज्य में जारी किसी भी कल्याणकारी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। और प्रमोद, महानगरों के की जानकारी के बाद अब जान लेते हैं महानगरों का मौसम भी।
1: जी,
0: सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। यहाँ बारिश के साथ आज तूफान की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा। शहर का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और प्रमोद, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी है?
1: जी, मैं शुरू करूंगा चेन्नई से। इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 27 डिग्री सेल्सियस, द मैक्सिमम विल बी अराउंड 35 डिग्रीज। Bengaluru is also expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 23 degrees Celsius. The maximum will be around 35 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with possibility of development of thunder and lightning. The temperature will hover between a minimum of 26 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius.
0: और प्रमोद, अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और अपने श्रोताओं को बताने का कि आज यानी 12 मई का दिन क्यों अहम है।
1: That's right. Today we observe International Nurses Day. This day is celebrated every year on the 12th of May to honor nurses and their service to society. सर फिरोज, आई थिंक ये जो नर्स की जो प्रोफेशन है बहुत नोबल प्रोफेशन है, है ना, किसी का ख्याल रखना।
0: और एक जो मैं चीज ऐड करना चाहूंगी प्रमोद, वो ये है कि अक्सर हम देखते हैं जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल अपने तन मन धन से सेवा करते हैं मरीजों की, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक तय टाइम होता है, वो आते हैं, पेशेंट को चेक करते हैं और चले जाते हैं। पर इफ यू सी नर्सेज जो है वो कहीं ना कहीं 24 घंटे उस मरीज जो रहता है उसकी डेडिकेटेड सर्विस मिले।

0: एब्सोल्युटली सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना. ठीक है, पैसा मिलना अलग बात है, बट किसी का एक्चुअली केयर करना, बिकॉज मेरे पापा भी उसी स्टेट में थे 5-6 महीने, तो मैंने देखा था वो जो नर्सेज उनका ख्याल रख रहे थे, they were doing it with so much of love and affection.
1: और कोविड के दौरान जो हमने देखा, अपनी जान गवा कर उन्होंने दूसरों की जान बचाई.
0: एब्सोल्युटली, nurses take care of patients with kindness, patience and dedication. They work day and night in hospitals and health centers to save lives and help people recover. As you rightly said, during difficult times like COVID-19 pandemic, nurses served people with great courage and commitment. On this special day, we thank all nurses for their hard work and selfless service.
1: बिल्कुल प्रमोद, और अब जिक्र कर लेते हैं उन शख्सियत का जिनके नाम पर नर्सिंग डे मनाया जाता है. फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सिंग डे. 1820 में इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ. इन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है, और जैसा कि हमने कहा, इन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे मनाया जाता है. इन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान घायलों की सेवा की. 1860 में लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नर्सिंग स्कूल की स्थापना की और पेशेवर नर्सिंग की नींव रखी. हर साल भारत में उत्कृष्ट काम करने वाली नर्सों को राष्ट्रपति द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया जाता है. और प्रमोद, अपने श्रोताओं को बता दें कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं. और मुझे लगता है ऑन पॉइंट जो है ये थीम रखी गई है.
0: बिल्कुल, एब्सोल्युटली.
1: और अब समय है कुछ और घटनाओं का जिक्र करने का जो आज ही के दिन घटित हुई.
0: जी,
1: राठौड़ वंश के शासक रहे राव जोध सिंह ने आज ही के दिन 1459 में गौरवशाली इतिहास समेटे राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर की स्थापना की. इन्होंने पहले मेहराना किले की नींव रखी, फिर इस किले के आधार पर जोधपुर का नाम रखा गया. इससे पहले जोधपुर का नाम था मारवाड़. राव जोधा ने पहले अपनी राजधानी मंडोर को बनाया, बाद में इन्होंने राजधानी जोधपुर में स्थानांतरित कर दी.
0: That's right. मैं आपको करीब 90 साल और आगे ले जाऊंगा. 1551, the San Marcos University is established in Lima, Peru, as the oldest continuously operating university in the Americas. And in 1846, the U.S. Congress overwhelmingly approved a declaration of war against Mexico, starting the Mexican-American War.
1: और मैं आपको ले जा रही हूँ लगभग 200 साल पीछे. 1666 में आज ही के दिन शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में आगरा पहुंचे. इसके बाद की घटनाओं और उनके साहस ने मराठा साम्राज्य के इतिहास को नई दिशा दी. आज ही के दिन 1915 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाने के बाद राज बिहारी बोस आज ही के दिन सानुकी मारू जहाज से जापान के लिए रवाना हुए. इन्होंने विदेशी धरती से भारत की आजादी की अलख जगाई.
0: अगर मैं आपसे एक क्विज पूछूं छोटा सा, तो आप बता पाओगे?
1: चलिए आप पूछिए, देखते हैं.
0: द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल फुल्ली ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपके हिसाब से कब आया था?
1: I'm guessing around 1940.
0: Very good. 1941. Conrad Zuse presents the Z3, the world's first working computer in Berlin. And in 1926, explorer Roald Amundsen and his crew aboard the airship Norge flew over the North Pole. This is recognized as the first undisputed verified aerial reaching the pole. In 1949, the Soviet Union officially lifted the 11-month blockade of West Berlin. The success of the Western Allies' Berlin airlift forced the reopening of land routes, marking a major de-escalation in the early Cold War.
1: और 1949 में ही विजयलक्ष्मी पंडित ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में भारत की राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला. वो अमेरिका में भारत की पहली महिला राजदूत बनी.
0: In 1967, the first ever quadraphonic concert was held when Pink Floyd performed the Games for May concert in London. And in 2020, on this day, Prime Minister Narendra Modi gave a clarion call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India. He said that a self-reliant India will stand on 5 pillars: economy, infrastructure, system, vibrant demography, and demand.
1: और प्रमोद, हमने काफ़ी घटनाओं का जिक्र किया जो आज ही के दिन घटित हुई और जिनकी वजह से आज का दिन हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है। पर आज ही के दिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस दुनिया में आए या इस दुनिया से आज ही के दिन विदा हुए, अब उन लोगों का भी जिक्र कर लेते हैं।
0: That's right.
1: सबसे पहले याद कर रहे हैं प्रगतिवाद

0: कि ये पहली पंक्ति के कवि शमशेर बहादुर सिंह को, जिनकी आज पुण्यतिथि है, इनका जन्म हुआ 13 जनवरी 1911 को। ये हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी के भी विद्वान थे। इनकी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता शिल्प संरचना है, यानी जो शब्दों के माध्यम से चित्र रचना करती है। इसका कारण चित्रकला के प्रति उनका लगाव था। इनकी मुख्य कृतियों में कुछ कविताएं, चुका भी हूं मैं नहीं इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी शामिल है। 1977 में चुका भी हूं मैं नहीं के लिए इन्हें प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सहजता अगर इंसान का गुण है तो शमशेर बहादुर सिंह जीवन इसका उदाहरण है। ये किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं दिखाते थे प्रमोद, जैसा इनका जीवन रहा वैसा ही इन्होंने लेखन किया। और अब हम एक इनका कविता पाठ अपने श्रोताओं को सुनाएंगे, जिससे जो ये वर्ड है, जो ये बयान है, ये और ज्यादा सच साबित होगा।
1: जैसे मेरी पसलियां खाली बोरे सूजों से रफू किए जा रहे हैं, जो मेरी आंखों का सूनापन है, ठंड भी एक मुस्कुराहट लिए हुए है जो कि मेरी दोस्त है। कबूतरों ने एक गजल गुनगुनाई, मैं समझ न सका, आसमान में गंगा की रेत आईने की तरह हिल रही है, मैं उसी में कीचड़ की तरह सो रहा हूँ और चमक रहा हूँ कहीं न जाने कहाँ।
2: That's right. 12th of May is also the death anniversary of famous American singer, actor and television personality Perry Como Vas. In fact, he was known popularly as Perry Como. During a career spanning over more than half a century, he recorded exclusively for RCA Victor for 44 years from 1943 until 1987. And I want to tell a small story, Saifuri. When I was little, I lived in London. And after lunch, my papa's favorite singer was Perry Como. तो लंच के बाद हमारा एक रिचुअल था कि पापा रिकॉर्ड लगाते थे एंड वी यूज्ड टू लिसन टू हिज सॉन्ग। तो मेरे जो बचपन का फर्स्ट सॉन्ग है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: मतलब आप काफी रिलेट कर पा रहे होंगे।
2: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।

जाने माने निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की आज जयंती है। इन्होंने राम राज्य, बैजू बावरा, गूंज उठी शहनाई, हिमालय की गोद जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। इन्होंने प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश पिक्चर्स और प्रकाश स्टूडियो की स्थापना की। विजय भट्ट को हिंदी फिल्मों में शास्त्रीय संगीत की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। इनकी फिल्मों में महान शास्त्रीय कलाकारों ने कई बार एक साथ अपनी गायकी या वादन का फन बिखेरा, जैसे बैजू बावरा में उस्ताद अमीर खां और पंडित डी वी पलूस्कर ने आज गावत मनमोरा गीत गाया था।

0: दोस्तों अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, दीजिए इजाजत सर फिरोजी और वीसी प्रमोद को, कार्यक्रम आज सवेरे समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
1: That's right, stay tuned for coming up next समाचार प्रभात, a Hindi news bulletin followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
0: Namaskar.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय

0: संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर हेमंत बिस्व सरमा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
3: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय

0: प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
2: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
3: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में ICC T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3

0: सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
1: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
4: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं।

0: को पहुंच रहे हैं हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिए और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर
3: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் திரைக்கானத்தில் அடுத்த ஒலிக்க இருக்கும் பாடலின் படம் பார்க்கிங். பாடலை பாடியவர் கபில் கபிலன்.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: ஏய் சாக்ஷி, இனிமே நான் பட்டனை தட்டினா போதும், அப்படியே பணம் கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டு போது தெரியுமா?
3: எதே? எஸ் ஜஸ்ட் லைக் பட்டனை பிரஸ் பண்ணா போதும் எனக்கு பணம் கொடுக்கறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு, அந்த மெசேஜ்ல ஜஸ்ட் நீங்க வீட்டுல இருந்துட்டு இந்த யூடியூப் இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக்லாம் லைக் மட்டும் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு பணத்தை நாங்கள் அனுப்புறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. செம்மல்ல? ஐயோ, அது எல்லாமே ஃபேக். சொல்றேன் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி லைக் பண்றேன், நான் பணத்தை கொடுக்கறேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்பி ஏமாறாதீங்க.
4: திரைக்கானத்தில் ஒலிக்க இருக்கும் பாடல் வாத்தி திரைப்படத்திற்காக ஸ்வேதா மோகன் பாடியது.

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है. गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई. सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है. पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है.
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं.
1: भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्वा सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी. श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं. तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमुड़ी को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है. इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है. वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापड़ी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है.

0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने पुंछ जिले के सुरनकोट सेक्टर के परिचालन क्षेत्रों का दौरा किया और आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा की। इस दौरान कोर कमांडर को वरिष्ठ अधिकारियों ने आतंकरोधी ग्रिड, खुफिया नेटवर्क और अंतर एजेंसी समन्वय तंत्र के बारे में भी जानकारी दी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाए। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said, "There is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources."
2: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
1: He said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to a steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Assam is set to witness a historic political event today with the swearing-in of Himanta Biswa Sarma as the Chief Minister of the state for a second consecutive term, making him the first non-Congress leader in Assam's history to hold the post for back-to-back terms. Dr. Sarma and his Council of Ministers will be administered the oath of office in secrecy by Governor Lakshman Prasad Acharya. Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, 4 other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The 4 Cabinet Ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh,

0: White House maternal health care event yesterday, Trump said his administration was now doing great with China after accusing previous U.S. administrations of allowing Beijing to take advantage of the United States. Trump repeatedly praised Xi during the interaction with reporters. International Nurses Day is being observed today. The day is observed every year on the 12th of May to celebrate nurses and their contribution to healthcare around the world. The theme for this year is Our Nurses, Our Future. Empowered Nurses Save Lives. On the occasion, Nagaland Chief Minister Neofo Ryo honored the nurses who serve with compassion, resilience and professionalism every day. The Cannes Film Festival, the annual celebration of independent cinema on the French Riviera, will kick off today with John Travolta, Adam Driver and Barbara Streisand among the superstars set to walk the red carpet. Cannes is the world's biggest film festival, first conceived in 1939 as an alternative to Venice's film extravaganza, which was then under the sway of the ruling fascists. The India Met Department has issued an orange alert for rain in Uttarakhand. Kashi, Chamoli, Rudra Prayag, Bageshwar and Pithoragarh districts of Uttarakhand for the next 36 hours, while a yellow alert has been issued for the remaining districts. According to the department, there is a possibility of hailstorms and gusty winds in various parts of the state during this period. In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Sunrisers Hyderabad at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad today. The match will start at 7:30 p.m. Indian time. Earlier, Delhi Capitals defeated Punjab Kings by 3 wickets at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Chasing a target of 211 runs set by Punjab Kings, Delhi Capitals scored 216 for 7 in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें कार पुलिंग को बढ़ावा दें ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें कार पूलिंग का विकल्प चुनें रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए

0: 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है।
1: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
2: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्राइसिस सिचुएशन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
3: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं। संसद भवन में श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत आपसी संबंधों की मजबूत नींव है। ये प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका की महिला और बाल मामलों की मंत्री सरोजा सावित्री पॉलराज के नेतृत्व में भारत आया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। ईरान ने शांति प्रस्ताव में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है।
4: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही हैं, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेही तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पाकिस्तान ने अमरीका के हवाई हमलों से बचाने के लिए ईरान के सैन्य विमानों को अपने हवाई अड्डों पर उतरने की अनुमति दे दी है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्त करने में पाकिस्तान की मध्यस्थता भूमिका के मूल्यांकन की मांग की है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अप्रैल में संघर्ष विराम घोषणा के तुरंत बाद ईरान ने एक खुफिया विमान सहित कई विमान पाकिस्तान के नूर खान हवाई अड्डे पर भेजे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ताइवान और ऊर्जा सुरक्षा उनकी आगामी चीन यात्रा के दौरान बातचीत के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अपने संबंधों की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ताइवान को लेकर तनाव नहीं बढ़ेगा।
5: व्हाइट हाउस में कल मात्र स्वास्थ्य कार्यक्रम में श्री ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन चीन के साथ बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने पूर्व अमेरिकी प्रशासन पर चीन को अमेरिका का फायदा उठाने देने का भी आरोप लगाया। श्री ट्रंप ने चीन से संबंधित अपनी टिप्पणियों को पश्चिम एशिया में व्यापक तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य बंद किए जाने की चिंताओं से जोड़ा। उन्होंने कहा कि चीन को अपने तेल भंडार का

0: 40% हिस्सा हॉर्मुज से प्राप्त होता है। श्री ट्रंप ने कहा कि शी जिनफिंग के साथ शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ताओं में ऊर्जा और ईरान प्रमुख विषय होंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: बांग्लादेश में क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, विश्व समाचार, ढाका।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। स्वास्थ्य सेवा में नर्सों के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 मई को ये दिवस मनाया जाता है। फ्रेंच रिवेरा में स्वतंत्र सिनेमा का वार्षिक उत्सव कांस फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। जॉन ट्रिवोल्टा, एडम ड्राइवर और बारबरा स्ट्रीसैंड सहित कई सुपरस्टार रेड कारपेट पर नजर आएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जाँच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in bid to save foreign exchange amid West Asia crisis. Prime Minister to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. Lok Sabha Speaker Om Birla says India and Sri Lanka are bound by deep civilizational, cultural and spiritual ties that have evolved over centuries. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products and to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduce consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden of the country's resources.
4: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होता है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
3: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad and the crisis has led to a steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
4: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु एनसीपीसीआर द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: एनसीपीसीआर आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும் சுகமான ராகங்களில் தொடரும் பாடல் டிஷ்யூன் திரைப்படத்திற்காக ஜெய்தேவ் ராஜலட்சுமி பாடியது.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिए और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन
2: கரெக்ட். ஒலித்துக் கொண்டிருப்பது சுகமான ராகங்கள், வழங்கிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் 100.1 FM கோல்ட். ஒலிக்க இருக்கும் பாடல் வேட்டைக்காரன் திரைப்படத்திற்காக, ஒலிக்க இருக்கும் குரல்கள் சங்கீதா ராஜேஸ்வரன், சுஜித் சுரீசன்.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சுகமான ராகங்களில் ஒலிக்க இருக்கும் பாடலின் படம் நினைத்தாலே இனிக்கும். பாடலை பாடியவர்கள் பிரசன்னா ஜானகி ஐயர்.

0: அத சொல்ல.
1: ஒலித்த பாடலுடன் சுகமான ராகங்கள் நிறைவு பெற்றது.

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கனகலதா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है. गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई. भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी. श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है. इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है. वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापट्टी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है. सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे. इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है. प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है. निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की. जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं. सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोहरीघाट औड़िहार यात्री पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया. इससे मऊ और गाजीपुर जिलों के यात्रियों को किफायती और सुरक्षित रेल सेवा उपलब्ध होगी. श्री वैष्णव ने कहा कि इस रेल सेवा का विस्तार जल्द ही वाराणसी तक किया जाएगा. श्री वैष्णव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं

पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख चार लेन का गलियारा गंगा के दक्षिण में प्रयागराज कानपुर आगरा दिल्ली मार्ग के साथ विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान के फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज लगभग 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 474 अंक लुढ़ककर 75,541 पर, जबकि निफ्टी 126 अंक की गिरावट के साथ 23,689 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिए और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर
2: நேரம் இப்பொழுது 12:15, 15 நொடி 100.1 FM கோல்டில் உரித்துக் கொண்டிருப்ப

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: திரைக்கலாம் புதிய பறவை திரைப்படத்திற்காக பி. சுசீலா பாடிய பாடல்.

சிட்டுக்கோரவே.

0: परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরের নামত শপথ লওঁ যে বিধির দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি মই প্রকৃত বিশ্বাস আর আনুগত্য পোষণ করিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव, सहायक नर्स मिडवाइव और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP

0: राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्य टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करूप

0: रैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के ए सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है।

0: मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेलेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिश्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: அடுத்த அறிவிப்பு தொடர்கிறது. ஆகாஷ்வாணி, நேரம் 2:30.
3: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணியின் சென்னை FM கோல்டு 100.1.
2: திரைகானம் ஒலிக்கும் நேரம் இது. வாணிஜெயராம் பாடியிருக்கும் பாடல் இடம்பெற்ற படம் சினிமா பைத்தியம். பாடலை கேட்கும் முன் விளம்பரங்கள்.
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है हमसे ज्यादा होशियार,

0: उसको कहो मैं 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
0: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
0: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: இனி பாடலை கேட்போம்.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिए और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।

0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: இனி அவன்தான் மனிதன் இந்த படத்திற்காக டி எம் சௌந்தரராஜன் பி சுசீலா பாடியிருக்கும் பாடல்

0: திரைகானம் ஒலிக்க கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கில செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லி நிகம். राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: NTA ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में NTA द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

0: और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। श्री प्रधान ने ये बात भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर की। उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हेमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लाऊं जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी APT के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। इससे ये कार्यालय स्थानीय मांग का विश्लेषण करने, प्रदर्शन की निगरानी करने और जमीनी स्तर पर त्वरित डेटा आधारित निर्णय लेने में सक्षम हो रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार का डिजिटल प्रयास एक मजबूत सुरक्षित संरचना सुनिश्चित कर रहा है, साइबर सुरक्षा को मजबूत कर रहा है और विश्वसनीय, लचीली तथा भविष्य के लिए तैयार डिजिटल सार्वजनिक सेवा वितरण को सक्षम बना रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री मोदी का स्वीडन और चौथे चरण में नॉर्वे जाने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The National Testing Agency, NTA, has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate medical education. In a social media post, NTA informed that this decision has been taken in the interest of students and in recognition of the trust on which the national examination system rests. The agency also stated that the government has decided to refer the matter to the Central Bureau of Investigation for a comprehensive inquiry into the allegations of paper leak. The agency said it will extend full cooperation to the Bureau and provide all materials, records and assistance required for the investigation. It said the decision was taken following the inputs examined by the NTA in coordination with central agencies and investigative findings

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: अहमदाबाद और छतरपुर स्थित सीआरसी में जिन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं वे हैं निदेशक सलाहकार एक पद, सहायक प्रोफेसर दो पद, विशेष शिक्षा में व्याख्याता दो पद। इन पदों के लिए पात्रता संबंधी विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य आवश्यकताएं इस वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। वेबसाइट का पता है www.ayjinishd.nic.in। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण में इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उपनिदेशक कृषि एक पद, उपनिदेशक सिविल मैकेनिकल एक पद, प्रधान निजी सचिव दो पद, लेखाधिकारी एक पद, उच्च श्रेणी लिपिक एक पद तथा अवर श्रेणी लिपिक एक पद। पात्रता शर्तों आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए जल शक्ति मंत्रालय की वेबसाइट jalshakti.gov.in तथा केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी ये तमाम जानकारी विस्तार से उपलब्ध है जिसका पता है www.cwc.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में इन पदों की कुल 83 उपलब्धियां मौजूद हैं और इनके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। रिक्तियां विभाग के अनुसार तय की जाएंगी। विभागों के नाम हैं एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, डर्मेटोलॉजी, ईएनटी, फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोनेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साइकेट्री, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और ब्लड बैंक, ट्रॉमा एवं सर्जरी मेडिसिन तथा यूरोलॉजी। आवेदन पत्र, विभागवार सीटों की संख्या, आरक्षण, नियमों और शर्तों आदि के विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.aimsgorakhpur.edu.in। इन भर्तियों के बारे में कोई भी नई सूचना इसी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। आप एक बार फिर वेबसाइट का पता नोट कर सकते हैं www.aimsgorakhpur.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।

नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देंगे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल की देंगे आपको जानकारी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और आज डेटलाइन सेगमेंट में बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण पेशे की जो मानवीय संवेदना के बहुत ही क्रूसियल जिसे कहें पहलू से जुड़ा हुआ है। आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है, इस पर हम बात करेंगे। और आज हम जिन्हें याद कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है कवियों के कवि, कवि शमशेर सिंह बहादुर को। तो शुरुआत में उनकी जो कविता है, जो सत्य को अभिव्यक्त होने के लिए किसी बाहरी सहारे या गवाह की आवश्यकता नहीं होती है ऐसा कहती है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो सत्य है वो स्वयं प्रकट होता है। वो बोलते हैं अपनी कविता बात बोलेगी में, हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, सत्य का मुख झूठ ही आंख

0: हे क्या देखें, सत्य का रुख समय का रुख है, अभय जनता को सत्य ही सुख है, सत्य ही सुख है। उनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे आज के इस अंक में। मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: Namaskar and a very good afternoon, Jagriti. Jagriti, you must have heard, we all have heard about the honest appeal by our Prime Minister since last 2 days. Yes, our Prime Minister has earnestly appealed for national discipline and nation-first initiatives, calling on Indians to adopt responsible, self-reliant habits to strengthen our country against global economic disruptions. The 7-point appeal calls for reducing fuel consumption, increasing use of public transport, and curbing non-essential gold purchases and foreign travel. The appeal highlights that a significant portion of India's foreign exchange is spent on imports like crude oil, gold, edible oil and fertilizers. And these restraints will foster a culture of collective responsibility rather than panic. So we shouldn't be panicking on these appeals. And of course, it's urging, he has been urging all the individuals to contribute to national resilience, similar to the efforts seen during the pandemic. Well, we must all take it seriously and try to follow it as economic patriotism rather than anything else. And shall we begin with our headlines now, Jagriti?
0: Bilkul, shuruaat karte hain. परीक्षा पत्र लीक के आरोपों के कारण मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश।
1: हेमंत बिस्वा शर्मा टेक्स ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ असम फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म।
0: सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की।
1: President Draupadi Murmu confers National Florence Nightingale Awards on 15th Nursing Professionals.
0: IPL cricket mein aaj sham Gujarat Titans ka muqabla Sunrisers Hyderabad se.
1: And as always, Jagriti, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk about, as you mentioned in the beginning, International Nurses Day. Today we are celebrating one of the most compassionate and dedicated professions in the world, that is nursing. Today, the 12th of May, world observes International Nurses Day, commemorating the birth anniversary of Florence Nightingale, the pioneer of modern nursing, whose service and vision changed healthcare forever. And this year's theme is Our Nurses, Our Future. Empowered nurses save lives. The theme highlights the urgent need to support nurses with better safety, respect, training, and resources because empowered nurses create healthier societies.
0: दोस्तों, हर अस्पताल में आधुनिक मशीनें होती हैं, हर डॉक्टर के पास मेडिकल का ज्ञान होता है, लेकिन अस्पतालों में जो चीज़ सचमुच मरीजों को ठीक करती है वो होती है मानवीय देखभाल, और ये देखभाल अक्सर करती हैं नर्सेज। मुश्किल पलों में मरीज का हाथ थामने से लेकर लंबी रातों तक बिना थके काम करने तक नर्सें दुनिया भर की स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों की धड़कन हैं। वो कमजोरों को दिलासा देती हैं, परिवारों का सहारा बनती हैं, डॉक्टर्स की मदद करती हैं और इमरजेंसी में तुरंत कार्रवाई करती हैं और संकट के समय मजबूती से खड़ी रहती हैं। आज के कार्यक्रम का ये हिस्सा उन खामोश नायकों को समर्पित है जिन्होंने दूसरों की देखभाल के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है।
1: International Nurses Day is celebrated on the birth anniversary of Florence Nightingale, lovingly remembered as the lady with the lamp. Born in 1820, Florence Nightingale transformed nursing into a respected profession. During the Crimean War, she cared for wounded soldiers under extremely difficult conditions. At night, she would walk through hospital corridors carrying a lamp, checking on injured soldiers and comforting them.
0: Florence Nightingale ke samarpan ne duniya bhar mein aadhunik nursing aandolan ko प्रेरित किया। उनका मानना था कि करुणा, स्वच्छता, अनुशासन और मरीजों की देखभाल से उनकी जानें बचाई जा सकती हैं। उनके विचार आज भी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को दिशा दिखाते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि केवल एक व्यक्ति की दयालुता और दृढ़ संकल्प भी दुनिया को बदल सकता है।
1: Yes, Jagriti, just imagine a hospital without nurses. Who would monitor patients day and night? Who would provide emotional support to frightened families? who would administer medicines, assist in surgeries, and respond instantly during emergencies.

0: These are the nurses who ensure that healthcare functions smoothly every single minute, isn't it?
1: बिल्कुल. और ये अनुभव हम सब ने, आपने, मैंने या जो भी श्रोता सुन रहे हैं उन्होंने ज़रूर किया होगा कि जब हम अस्पताल में होते हैं इंसान वैसे ही टूटा हुआ होता है, तो तमाम जो मेडिकल प्रोसेस होती हैं उनमें जो समय जाता है, जो तकलीफ़ होती है, उनमें वाकई दिलासा देती हैं जो नर्सेज होती हैं. आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो देखती हैं, उसके अलावा कंसोल भी करती हैं, और ये बड़ी चीज़ हो जाती है. अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों की सराहना करते हुए उन्हें देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया. और सचमुच उनका योगदान अस्पतालों की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है.
0: And President Draupadi Murmu also today conferred the National Florence Nightingale Awards 2026 to 15 nursing professionals at a function which was held in Rashtrapati Bhavan. The award has been given for their outstanding contribution in the field of nursing. And these prestigious awards are presented to registered nurses, midwives, auxiliary nurse midwives and lady health visitors serving across central and state governments, union territories and voluntary organizations. Each award includes a certificate of merit, a cash prize of 1 lakh rupees and a medal symbolizing the nation's gratitude for the invaluable service rendered by these health warriors.
1: जी, और अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के अमूल्य योगदान के प्रति एक उचित श्रद्धांजलि है जो करुणा और अटूट समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा में लगी हुई हैं. उन्होंने कहा कि नर्सिंग कर्मी सेवा के उच्चतम मानकों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए और अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेताओं की कर्तव्य के प्रति उनकी प्रेरणादायक निष्ठा और रोगियों की देखभाल के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए उनके अथक प्रयासों की सराहना भी की.
0: Rightly so, Jagriti. In regard to their profession, now let us take a moment to see what all services nurses extend. These are rural health centers. They also serve us in urban hospitals, in schools and colleges, ambulance services, military healthcare units, in community outreach programs, in old age homes, and also in disaster relief camps. They work in every corner of society where care is needed.
1: बिल्कुल. और कभी कभी जो ज़रूरत होती है एक इंसान को, वो दवाओं से पूरी नहीं होती है, दवाओं से वो उतनी जल्दी ठीक नहीं होता है जितना कि किसी का जो व्यवहार उसके प्रति है उससे वो ठीक हो जाता है. और जो नर्सेज हैं वो अक्सर यही करती हैं. वो परेशान मरीजों के लिए हिम्मत का सहारा बनती हैं, चिंतित परिवारों की बात सुनने वाली बनती हैं, और ठीक होने के सफ़र में एक मार्गदर्शक बनती हैं, और कभी कभी अकेले जो पल हैं उनमें एक दोस्त भी बन जाती हैं.
0: एंड मेनी पेशेंट्स रिमेंबर द स्माइल ऑफ अ नर्स लॉन्ग आफ्टर दे रिकवर. अ रीअश्योरिंग वॉइस सेइंग यू विल बी ऑल राइट कैन गिव स्ट्रेंथ टू समवन बैटलिंग इलनेस. नर्सिंग इज नॉट ओनली अ प्रोफेशन, इट इज अ कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटी. फ्रेंड्स, द कोविड-19 पैंडेमिक शोड द वर्ल्ड द एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स. व्हाइल सिटीज फेल साइलेंट एंड पीपल स्टेड इनडोर्स, nurses stepped forward fearlessly. They worked long hours in protective equipment, stayed away from families, and risked their own health to save others. It's not an easy job.
1: बिल्कुल. और कई नर्सों ने उन मरीजों को सांत्वना दी है जो अपने प्रियजनों से मिल नहीं पा रहे थे. वो हजारों लोगों के लिए देखभाल करने वाले भावनात्मक संबल और जीवन रेखा बन गईं. उनके समर्पण ने दुनिया को ये याद दिलाया कि नायक हमेशा कैप नहीं पहनते, कभी कभी वो मास्क, दस्ताने और यूनिफॉर्म भी पहनते हैं.
0: एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस ईयर्स थीम, इट फोकसेस ऑन एम्पावरमेंट. बट व्हाट डज एम्पावरिंग नर्सेस रियली मीन? It means providing safe working conditions, ensuring fair salaries to them, offering mental health support, providing advanced medical training, respecting their expertise, and of course, reducing workplace stress and burnout as well.
1: बिल्कुल. और जब नर्सों को सहयोग मिलता है तो मरीजों को बेहतर देखभाल मिलती है, समुदाय और भी स्वस्थ बनते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियां और कहीं मजबूत होती हैं. कई देशों में नर्सें इन विषयों पर जागरूकता अभियान का नेतृत्व भी करती हैं, जिनमें शामिल हैं टीकाकरण, पोषण, मातृ देखभाल, बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, रोगों की रोकथाम. और उनकी भूमिका न केवल

0: also part of the celebrations. The Legacy 2026 Literary Fest is being viewed as a tribute to their rich heritage of Akashvani Kozhikode and its enduring contribution to Malayalam language, literature and culture over the past 75 years. Suresh VK for Parikrama, Akashvani News, Kozhikode.
1: और अब चलते हैं मुंबई की ओर. जैसा कि आज पूरा विश्व प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है और जब हम प्रदूषण की बात करते हैं और उससे होने वाले परिणामों की बात करते हैं तो अक्सर ये जो चर्चाएं हैं वो जलवायु प्रदूषण तक ही सीमित रहती हैं या फिर वायु प्रदूषण की हम बात करते हैं, लेकिन पुराने फटे हुए कपड़े जिन्हें हम बड़ी ही आसानी से फेंक देते हैं वे भी ज़मीन के प्रदूषण का बड़ा कारण बनते हैं और अगर ये कपड़े जलाए जाएँ तो वायु प्रदूषण में भी बढ़ोतरी होती है. इसी समस्या का छोटा सा समाधान ढूंढा है नवी मुंबई के वस्त्र पुनर्प्रक्रिया सुविधा केंद्र यानी TRF ने. आइए जानते हैं कि किस तरह से ये सेंटर काम कर रहा है हमारी संवाददाता की इस रिपोर्ट में.
2: नवी मुंबई नगर निकाय के माध्यम से नवी मुंबई के बेलापुर में चल रहा वस्त्र पुनर्प्रक्रिया सुविधा केंद्र देश में इस तरह की पहली पहल है. पुराने कपड़ों की पुनर्प्रक्रिया से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की इस पूरी चक्राकार अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण इस केंद्र ने प्रस्तुत किया है. कपड़ों के एकत्रीकरण से लेकर उनसे अपसाइकल्ड वस्तुएं बनाने की पूरी प्रक्रिया हमें बता रही है नवी मुंबई नगर निकाय के उद्यान विभाग की उपायुक्त स्मिता काळे.
3: इसके लिए दो सिस्टम्स अवेलेबल है. स्टेज में 250 गृह निर्माण संस्थाओं का चयन किया गया जहां पे एक बिन रखा गया जो सिर्फ पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट को कलेक्ट करता है और दूसरा है RRR सेंटर्स. यहां पे जिसको भी जो कपड़ा नहीं चाहिए वो वहां पे रख सकते हैं. तो ये दोनों सोर्स से महापालिका का जो विशेष कलेक्शन व्हीकल ये सब पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट को उठाता है और फिर TRF सेंटर में जमा कर देता है. वहां पे उसको तोला जाता है और उस कपड़े को हम 5 श्रेणी में विभाजित करते हैं. पुनर्वापर योग्य, अपसाइकलिंग, डाउनसाइकलिंग, रीसाइकलिंग या फिर अनुपयोगी योग्य. इस वर्गीकरण के उपरांत उसका सैनिटाइजेशन किया जाता है. वो जो कपड़ा है उस कपड़े के धागे अलग किए जाते हैं, उसको यान भी बोलते हैं. तो ये जो यान निकलते हैं इस यान से जो भी वस्तुएं हम यूज में ला सकते हैं ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जैसे बैग्स है, मैट्स है, कुछ एसेसरीज है, होम डेकोर आइटम्स है. इस TRF सेंटर में लास्ट ईयर 41.5 मेट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्ट का संकलन किया गया है और उससे 41,000 से अधिक वस्तुओं का निर्माण किया गया है.
2: ये केंद्र पर्यावरण में जाने वाले वस्त्र कचरे को कम करने के साथ ही स्थानीय महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का काम भी कर रहा है. एक केंद्र से शुरू हुई इस पहल के लिए भविष्य की संभावनाएं अगणित है और इस पर काम भी चल रहा है. पहले के जमाने में पुराने कपड़ों का पुनर्वापर घर पर ही होता था, लेकिन आज के बदलते तौर की जीवन शैली को देखते हुए नवी मुंबई का वस्त्र पुनर्प्रक्रिया सुविधा केंद्र एक ऐसी पहल है जो नवनिर्मिति और शाश्वत जीवन शैली का महत्व हमें बताती है. परिक्रमा के लिए नवी मुंबई से स्वप्ना हरड़कर के साथ मुंबई से मैं अंकिता आप्टे.
4: And let's take you all to Itanagar, where the Center for Earth Sciences and Himalayan Studies, and in collaboration with the National Center for Polar and Ocean Research and Northeastern Regional Institute of Science and Technology, has successfully completed the 5th Kangri Glacier Expedition in the transboundary Margo Chu Basin of Tawang District in Arunachal Pradesh, a critical headwater region of the larger Brahmaputra Basin system. We have a report on this.
5: The scientific expedition commenced on 4th May 2026 with the objective of undertaking detailed glacier health assessments, cryospheric monitoring and climate-linked hazard investigations in the eastern Himalayan region. One of the major observations during expedition was the development of a significant glacier sinking zone within the study area, where the glacier snout is rapidly collapsing and creating unstable terrain conditions. The team noted that such geomorphological instability could substantially increase downstream vulnerability and landscape hazards in the Margo Chu Basin. Another major concern identified was the emergence of a potentially dangerous pro-glacial lake at an elevation of nearly 16,500 feet. The newly formed lake poses a potential glacial lake outburst flood, glove threat to the downstream regions of the Margo Chu Basin, with possible transboundary cascading impacts on vulnerable communities, ecosystems and river systems. Although the region experienced comparatively healthy winter snow accumulation this year, the expedition findings indicate that glacier melting continues

विशेषताओं में बिंब विधान, प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति और गहन जीवन अनुभूति का अनूठा मिश्रण है। वे उर्दू हिंदी की सामासिक संस्कृति के संवाहक और शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी कवि रहे हैं। और आज जयंती है हिंदी सिनेमा के एक महान फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक विजय भट्ट की। उन्होंने प्रकाश पिक्चर्स की स्थापना की और बैजू बावरा, रामराज्य और गूंज उठी शहनाई जैसी क्लासिक हिट फिल्में दी, जिन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग की नींव रखने में मदद की। तो आइए सुनते हैं बैजू बावरा से एक गीत।

0: उन्होंने 64 से अधिक फीचर फिल्मों का निर्माण किया। मुंबई के अंधेरी में प्रकाश स्टूडियो की उन्होंने स्थापना की। विजय भट्ट ने हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की फिल्मों में अपना योगदान दिया है।
1: We also pay tribute to Anant Vitthal Kher, known as Dhananjay Kher, who was an Indian biographer who profiled certain politicians and political activists. Considering his prolific write-ups on freedom fighters that showcased he was bestowed with Padma Bhushan by the Indian government, he was also rewarded with the Vidyarthi Award by Navanalanda Mahavir Foundation in 1977 for his acclaimed contribution to the field.
0: कथक नृत्यांगना अलकनंदा देवी ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा। वे प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी की बड़ी बहन थी। अलकनंदा देवी का ताल्लुक वाराणसी से था, हालांकि उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अलकनंदा जी ने फिल्मों में भी काम किया। सोहराब मोदी की फिल्म हुमायूं में उन्होंने नृत्य किया।
1: And today we also pay tribute to Ghanshyam Nayak, who was an Indian drama, film and television actor. He first achieved fame as a child artist in the 1960 movie Masoom and the song Nani Teri Morni Ko Mor Lege. Who doesn't know this song? His last memorable role was of Natwarlal Prabhashankar Udhaiwala or Natu Kaka in Tarak Mehta Ka Ulta Chashma.
0: जी, और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर की आज जयंती है। उन्होंने ये उपलब्धि 1956 में हासिल की। भारत के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। नंदू नाटेकर ये पुरस्कार हासिल करने वाले भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी रहे। उन्होंने अपने करियर में 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। और चलते चलते आपको बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेटर और वायुसेना की पूर्व अधिकारी शिखा पांडे आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। और इसके साथ ही इजाजत दीजिए जागृति और अनुजा को।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை ரோகிணி ஸ்ரீநாத் அவர்களின் பாட்டு கேட்டீர்கள். சி எஸ் சின்மயி அவர்கள் வயலின், விளாங்குடி வி சிவகுமார் அவர்கள் மிருதங்கம். சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தியில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லின் நிகம். भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी नेरम 6:05
2: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷவாணியின் சென்னை எஃப்எம் கோல்டு 100.1.
1: இந்த அலைவரிசையில் இடம்பெறவிருக்கும் நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய விபரம் நிகழ்ச்சி நிரல் இன்றும் நாளையும் மாலை 6:30 மார்க்கெட் மந்த்ரா டெல்லி அஞ்சல், 7:10 சிறுவர் சூளை, விடுதலை போராட்டத்தின் ஒளி விளக்கு ஆசாப் அலி அவர்கள் பற்றிய உரை வழங்குபவர் பி டெபோரல் தனிஷ்டா, சங்கீதம் சந்தோஷம் ஜிடி தீக்ஷா பாட்டு, நீதிக்கதைகள் சொல்பவர் ஏ ஹரிச்சரண், முயற்சியே வெற்றிக்கு வழி ஆர் வெங்கட நாராயணன் வழங்கும் உரை. 7:50 செய்தி கதமம், 8:10 திரைகானம், 9:15 ஸ்பாட்லைட், 9:30 மணி டாக், 9:45 மந்தன், 10:10 விஸ்வதர்ப்பன், 10:20 வேர்ல்டு நியூஸ், 10:30 மேற்கத்திய இசை, 11:10 திரைகானம் ஒலிக்கும். தொடர்வது நாளைய நிகழ்ச்சி நிரல். நாளை புதன்கிழமை காலை நள்ளிரவுக்கு பின் 12:10 இரவின் மடியில், 1:10 நினைவில் நின்றவை, 2:10 நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, 3:10 இனிய ராகம். பண்டிட் ஹர்விந்தர் சர்மா அவர்களின் சித்தாரிசை, ஜக்ஜித் சிங், சித்ரா சிங் ஆகியோர் பாட்டு. அதிகாலை 4:10 பொங்கும் மங்களம், அடையாறு எஸ் ஜெயராமன் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை, கோவிலூர் பி பழனிவேல் அவர்கள் தவில். 5:10 புலரும் பொழுது, 6:10 தேனிசை, 7:25 திரை இசை, 7:30 ஆஜ் சவேரே, 8:30 திரைகானம், 9:00 அரங்கிசை நிகழ்ச்சியில் காரைக்குடி எஸ் சுப்பிரமணியம் அவர்களின் வீண இசை, சேர்த்தலி ஆர் அனந்தகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிருதங்கம், டி வி வாசன் அவர்கள் கட்டம். இந்த நிகழ்ச்சி மதியம் 720 கிலோஹெர்ட்ஸில் ஒலிக்க கேட்கலாம். 10:10 விஸ்வதர்ப்பன், 10:20 வேர்ல்டு நியூஸ், 10:30 சுகமான ராகங்கள், 11:10 திரைகானம், 11:30 மல்லைப்பூதண்டா தெலுங்கு நிகழ்ச்சி. இதில் டாக்டர்

0: Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal.
1: Namaskar, Market Mantra karyakram mein aapka swagat hai. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नज़र डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार ए के भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू राजेश।
1: सबसे पहले एक नज़र आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ राजेश।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्स स्लंप नियरली 2%, सेंसेक्स डिक्लाइंस ओवर 1400 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 23400। India's retail inflation increases to 3.48% in April this year, and global crude oil prices continue upward trend.
1: आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में लगभग 2% की गिरावट, सेंसेक्स में 1400 अंकों से अधिक का नुकसान, निफ्टी 23400 के स्तर से नीचे फिसला। अप्रैल माह के दौरान घरेलू खुदरा महंगाई दर बढ़त से 3.48% दर्ज, और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का दौर।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। लगातार चौथे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से

0: 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.83% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 2.5% और स्मॉल कैप सूचकांक में 3.2% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई। कारोबार की शुरुआत में आज बाजार मंदी के साथ खुले और वैश्विक बाजारों के संकेतों से बाजार में बिकवाली का दबाव बना रहा।
1: Benchmark domestic equity indices slumped for the fourth consecutive session today amid weak global cues. The Sensex plunged 1,456 points or 1.92% to close at 74,559. The Nifty shed 436 points or 1.83% to settle at 23,380. The broader market on the National Stock Exchange ended with deeper cuts. The mid-cap 100 slipped over 2.5%, while the small-cap 100 tumbled nearly 3.2%. Earlier, the markets opened lower and continued to witness persistent selling pressure throughout the trading session.
0: सेंसेक्स पैक की 30 में से 29 कंपनियों में आज नुकसान दर्ज हुआ। गिरावट वाले प्रमुख कंपनियों में टेक महिंद्रा और अडानी पोर्ट 4.4%, एचसीएल टेक 4.1% के नुकसान से बंद हुए। हालांकि स्टेट बैंक का शेयर मामूली बढ़त बनाने में कामयाब रहा।
1: ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ वाज सीन अक्रॉस ऑल सेक्टोरल इंडेक्सेस एट द बीएसई। अमंग द टॉप लूजर्स रियल्टी नोज डाइव्ड 4.2%, आईटी लॉस्ट अराउंड 3.7% एंड फोकस्ड आईटी ड्रॉप्ड 3.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,412 companies declined, 869 advanced and 129 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 98.3 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। मिश्रा भट्टाचार्य, किस तरह से आंकते हैं लगातार 4 दिनों से शेयर बाजार में गिरावट का दौर और तकरीबन 4 दिनों में 4% के आसपास बाजार में नुकसान हो चुका है। आने वाले दिन कैसे नजर आते हैं? क्या ये दबाव घरेलू है, क्या ये दबाव वैश्विक है या दोनों का मिला जुला रुझान?
2: इस सवाल का जवाब आपने यही दिया है, ये घरेलू दबाव भी है और वैश्विक जो रुझान जो है उसका भी ये कारण है। वैश्विक जो युद्ध विरोधी की जो एक आशा थी वो आशा की किरणें अब थोड़ी दूर चली जा रही हैं, क्योंकि अब जो फोकस जो है वो ट्रंप साहब का चाइना विजिट के ऊपर गया है। अब चाइना में वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, ताइवान के साथ क्या समझौता होता है चाइना के ज़रिए, उसके ऊपर नज़र टिका हुआ है। और इस तरफ ईरान की जो है युद्ध विरोधी की जो आशाएँ जो थी वो सॉर्ट ऑफ एवेपोरेट करने को लगी हैं, तो और तेलों के दाम उसी हिसाब से बढ़ भी गए हैं। तो एक तो हुआ कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स का इम्पैक्ट हुआ है और दूसरी ओर ये हुआ है कि जो डोमेस्टिक वातावरण में सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया है पिछले 2 दिनों में कि सख्त कमर कसने की ज़रूरत है, ऑस्टेरिटी ड्राइव की ज़रूरत है, विदेश यात्रा में एक अंकुश लगाना ज़रूरी है और जो सोना खरीदने के ऊपर थोड़ी बहुत जो चाहत जो है उसको में उसमें कमी करनी चाहिए। तो ये सारे वातावरण से
0: मतलब जहाँ जहाँ विदेशी मुद्रा सीधे तौर पे इन्वॉल्व है वहाँ बचना चाहिए।
2: देखिए करीबन हमारी जो जो जो हम आयात करते हैं उसकी एक तिहाई आयात 4 चीज़ों से होती है। एक तो होता है सोना, दूसरा होता है क्रूड ऑयल, तीसरा होता है जो खाने का तेल और चौथा होता है फर्टिलाइज़र उर्वरक चीज़ें। तो ये 4 चीज़ों में मैं समझता हूँ कि किस तरह से जो विदेशी मुद्रा का कुछ जो संचय कर सकें हम उसके लिए सरकार की पूरी तरह से ये मनोवासना है कि वो होनी भी चाहिए कि ये कंट्रोल चेक किया जाए। उसका मतलब ये है क्या कि रिटेल प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़ेंगे, जो तेलों के कंपनी की जो जो ऐलान गए हैं कि पेट्रोल का दाम में 20 रुपये प्रति लीटर की शायद कमी है इस वक्त, और जो डीजल में है वो पहले तो कह रहे थे 100 रुपये की, अब कह रहे हैं 40 रुपये की, पर जो ऐलान जो हो रही है 30,000 करोड़ की जो तेल कंप

0: a weakness in their prices. But the moment they are allowed or they increase their prices. So okay. If you are a punter, then probably you would take a decent position in these oil refining company stocks at this point in time.
1: Okay, so we do have the oil story a bit later in the program. If the Hormuz remains partially closed for another 60 to 90 days, what would be the cascading effect on the Brent crude, which is already, I think somewhere near 105, if I'm not mistaken, or to 107 barrels today? And what threshold price would trigger a full-blown current account crisis for India?
0: Well, first of all, we need to understand that almost 46% of our total crude oil and petroleum products come through the Strait of Hormuz. And that is the share, almost half of your requirements are impacted by this bottleneck right now. We need to see to what extent the Russian oil, to what extent the American oil,
1: yep,
0: to what extent the Venezuelan oil can meet the gap. So I think we have the strategic petroleum reserves to take care of us for about 50-60 days. But beyond a certain level, if this stalemate continues, it will be a very, very difficult situation to deal with, I think, which is what the Prime Minister the other day was talking about. So therefore, we have to take into account the fact that oil is a critical input for a variety of industries. Take the agriculture sector, take the fertilizer, and what we are not right now talking about, the fiscal impact of the entire crisis. The fiscal impact of this crisis will be reflected very soon during the year because of the fertilizer subsidy bill, because of the revenue collections, because the government has already cut taxes on petrol and diesel.
1: Mr. Bhattacharya, we will discuss further on this as we go along. Mm. In the meantime, I think we do have a story, Amit, on CPI.
2: जी नजर डालते हैं खुदरा मुद्रास्फीति पर. अप्रैल के दौरान खुदरा मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर मामूली बढ़त से 3.48% दर्ज हुई. इससे पिछले माह मुद्रास्फीति की दर 3.4% थी. लगातार चौथे महीने खुदरा मुद्रास्फीति में बढ़त दर्ज हुई है. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार आधार वर्ष में बदलाव के बाद मुद्रास्फीति ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़त के साथ 3.74% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में महंगाई दर मामूली बढ़त से 3.16% दर्ज हुई. इस दौरान खाद्य मुद्रास्फीति 3.87% से बढ़कर 4.2% हो गई. पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बावजूद घरेलू महंगाई दर रिजर्व बैंक के निर्धारित सीमा में ही दर्ज हुई है. महंगी होने वाली प्रमुख वस्तुओं में चांदी, सोना, हीरा, प्लेटिनम आभूषण, टमाटर और नारियल जैसे उत्पाद प्रमुख रूप से रहे. हालांकि अप्रैल के आंकड़े हैं, क्या हमें ये मानना चाहिए कि अप्रैल के आंकड़ों से हमें इस बात का आभास हो जाता है कि मई का जो महीने के बाद हम जो खासतौर पे जो रिटेल इन्फ्लेशन देखेंगे वहाँ पे शायद हमें थोड़ा सा ज़्यादा दबाव पड़ता हुआ नज़र आया, ज़्यादा
0: आपने, आपने एकदम सही कहा. जो जो इस जो डेटा जो आई है वो पूरी तरह से जो इम्पैक्ट जो हुआ है उसको कैप्चर नहीं किया है. और आपको ये भी देखना होगा कि इस समय जो जो जो जो रिटेल जो पेट्रोल एंड डीजल है उनके दाम भी बड़े नहीं हैं. तो और वो एक ऐसी चीज़ है जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट में बहुत काम वो करती है, इम्पैक्ट करती है. तो इस वक्त जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो हम देख रहे हैं और जो हम बात हमने अभी डिस्कस की है उसके साथ बहुत बड़ा अंतर है
2: जी.
0: तो अप्रैल का जो ये 3.48% का जो रिटेल खुदरा जो मुद्रास्फीति आपने बताया है
2: जी,
0: ये जो हमारी जो क्राइसिस की जो जो आकार जो होने वाली है उसको नहीं दर्शाती है. मैं समझता हूँ कि अगर दाम बढ़े और उसके साथ साथ सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट के साथ साथ बहुत चीज़ों की जो पेट्रोल डीजल को इस्तेमाल करते हैं उनके भी दाम बढ़े तो मैं समझता हूँ तब देखना पड़ेगा कि वो RBI की जो 4% की जो टारगेट रेट जो है उससे बढ़ती है. मेरा मानना है कि RBI का जो अपना ही जो अनुमान जो है वो उसमें बढ़ने की पूरी तरह से हम
2: आशंकाएं हैं. एक चीज़ यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा विशेषज्ञ एक्सपर्ट के तौर पे,

0: अगर जिस तरह से राजेश ने जिक्र किया, अगर हॉर्मुज वाला संकट हल हो जाता है तो भी हमको इस तरह की महंगाई के आंकड़ों से पार पाने में कितना समय लग सकता है?
1: देखिए, अगर मान लीजिए ये हॉर्मोन्स की जो समस्या है कल ख़त्म होती है, तो मैं मानता हूँ कि इसकी जो प्रोलॉन्ग जो इम्पैक्ट होती है करीबन एटलीस्ट 6 से 8 महीने तक चलेगी, क्योंकि ये चीज़ इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जो रिफाइनरीज जो हैं उन्होंने रिफाइनरीज के पास इतना तेल उनके टैंक्स में आ गया है कि उन्होंने एक समय आ गया है कि वो बहुत करीब हैं उस समय के जब उनको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा शायद, और जिस दिन वो बंद करें उसका मतलब है कि उसकी जो साइकिल होती है वो एक बार अगर बंद कर दें तो वो पूरी साइकिल वापस लाने में बहुत समय लगता है, और ये चीज़ जो क्लियर होने माइनिंग क्लियर होने में तो 6 से 8 महीने की समय मिनिमम ये क्लियरेंस का लगेगा, मतलब तो आज की तारीख में ठीक होगा तो 6 महीने समझ लीजिए उसके सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स तक रहेंगे।
0: तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको अपने अपने
1: कमर कसनी है
0: और कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान देना, शायद अगर खर्च के हिसाब से थोड़ा सा कम करना है, चाहे वो खाद्य तेल हो, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे विदेश यात्राएं हैं, चाहे सोने के प्रति ललक हो, उसको तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्या इन सब चीज़ों से हम मान सकते हैं कि फौरी तौर पर ही सही लेकिन थोड़ी राहत मिल सकती है, खासतौर पर जब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है?
1: देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छी उन्होंने एक मैसेज दिया है, पर उसके साथ साथ जो पॉलिसी ऑप्शंस जो हैं उनको भी एक्सरसाइज करना चाहिए
0: जी।
1: वो पॉलिसी ऑप्शंस पेट्रोल एंड डीजल के दाम बढ़ाना, गोल्ड के ऊपर क्या करना कंट्रोल करना चाहिए, या रेमिटेंसेस के ऊपर क्या करना चाहिए, सरकार को जो उचित समझा है उनको करना चाहिए, और ये पॉलिसी ऑप्शंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। सिर्फ लोगों को एहसास दिलाना, कमर कसने
0: अपील के साथ
1: अपील
0: साथ, साथ,
1: साथ, साथ कुछ पॉलिसी एक्शन की बहुत सख्त जरूरत है।
0: नजर डाल लेते हैं एशिया शेयर बाजार पे। एशिया बाजारों में आज मिला जुला दौर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.3%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक तथा हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% की मामूली गिरावट से बंद हुए। हालांकि जापान का निकेई 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक मामूली बढ़त बनाने में कामयाब रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी मंदी ही नजर आई। लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.4% से 1.3% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
2: The benchmark S&P 500 and the tech-heavy Nasdaq composite closed at record highs yesterday, supported by technology stocks. This happened despite a rise in oil prices after US President Donald Trump rejected Iran's latest proposal to end the war. The S&P 500 advanced 0.2% to 7,413. The Dow Jones Industrial Average rose 0.2% to close at 49,704. The Nasdaq Composite Index added 0.1% to 26,274. Meanwhile, investors will closely watch the CPI data, corporate earnings and a high-stakes meeting between the leaders of the US and China scheduled for this week. What is your expectation from the US-China talks, which is scheduled to happen next week? And what good or bad can it bring for the world economy?
1: Well, the overt expectations which we all see is what kind of arrangement the Chinese and the US reach on how to treat Taiwan and Taiwan's ambitions, aspirations. There is expectation that probably Mr. Xi and Mr. Trump will reach an agreement by which Taiwan's aspiration, genuine aspiration, legitimate aspirations are addressed and taken care of. But the unstated expectation in this thing is to what extent Mr. Trump is influenced and persuaded by Mr. Xi to find an early resolution of the Strait of Hormuz crisis. Remember, China is among those countries who are very, very badly affected by the Strait of Hormuz blockade. One can expect that probably this discussion will also try to find an early solution to the Strait of Hormuz problem.
2: Okay, they're meeting on May 13 on 2:15, and they will cover trade, Taiwan, Iran and rare earths simultaneously. According to what is the probability that geopolitical fault lines that

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपट

0: करने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान संधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Vandhi Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest.
3: On the 14th and 15th of this month, the BRICS foreign ministers meeting is being held, which we are chairing. The Prime Minister's first stop will be the United Arab Emirates. Apart from that, the other four countries to be visited are Norway, Sweden, Italy and Netherlands.
2: Speaking about India's relations with Nepal, Mr. Jaiswal said both sides are now working closely to further deepen the partnership. Talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit, there will be talks on energy security. He added that there will also be talks on increasing trade and investment between the two countries. On Mr. Modi's visit to Norway, Sweden, Italy and the Netherlands, Mr. Jaiswal said that these countries are also the centres for innovation and clean energy technologies, and discussions on these matters will be held during the Prime Minister's visit. Replying to question on reports regarding China's support to Pakistan during Operation Sindoor, Mr. Jaiswal said that these reports corroborate what was known earlier. He said that Operation Sindoor was a precise, targeted and calibrated response to the terrorist attacks in Pahalgam aimed at destroying state-sponsored terrorist infrastructure operating out of Pakistan and at its behest. Mr. Jaiswal said that as per India's neighbourhood first policy, New Delhi continues to support these countries with energy supplies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that India is capable of strengthening itself against all obstacles, be it economic, technological or geopolitical. Speaking at the CII Annual Business Summit 2026 on next-gen labour reforms, driving industry growth and job creation in New Delhi, he said, the country currently has sufficient foreign exchange reserves to cover nearly 11 months of imports, placing the country in a very strong position globally. Speaking at the summit, Education Minister Dharmendra Pradhan stressed the need for a skill-based education system. And

விஷமகார கண்ணன், விஷமகார கண்ணன், பொல்லாத விஷமகார கண்ணன்.

0: நிகழ்வுகள் நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர்.
1: இந்த கருமட்டி மற்றும் பூச்சிக்கொண்டாம்பாளையம் ஆகிய இரண்டு கிராமங்களில் வாழும் பழங்குடிய மக்களுக்காக சில விவசாய இடுபொருள்களை கொண்டு வந்து கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கின்றோம். இது மட்டுமல்லாமல் சில நிபுணர்களை இங்கு அழைத்து வந்திருக்கின்றோம். அவர்கள் வீட்டுத் தோட்டம் மற்றும் தோட்டக்கலையில் குறுமிளகு மற்றும் காஃபி இவர்கள் இந்த பயிர்களை பயிர் செய்வதற்கான உயர் தொழில்நுட்பங்களை சொல்வதற்காக வந்திருக்கிறார்கள். இந்த நிகழ்வை நாங்கள் இன்னும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே வருகின்றோம். இந்த திட்டமானது மத்திய அரசால் எங்களுக்காக வேண்டி நிதியுதவி செய்து வருகிறார்கள். இந்த திட்டத்தினை இந்த செயல்படுத்துவதில் எங்களுக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது.
0: கோவை மாவட்ட கரும்பு இனப்பெருக்க நிறுவனம் சார்பில் திருப்பூர் மாவட்டம் கருமுட்டி பகுதியில் பழங்குடியினருக்கான பயிற்சி முகாம் நடைபெறுகிறது. இதில் ஏராளமான பழங்குடியினர் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர். திருப்பூர் மாவட்டம் கருமுட்டி பகுதியிலிருந்து சபரீஷ்.
2: இத்துடன் இன்றைய செய்தி கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.
3: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கில செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
4: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே லவ்லி நிகம். भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों की प्रमुख बैठक में भाग लेंगे. वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे. श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी.
5: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी. जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके. इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है. यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है. इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं. तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा.
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं. उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है. भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं. दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है. इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है. भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है. आज नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है. प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में ईंधन की कीमतें न बढ़ें. श्री भाटिया ने कांग्रेस पार्टी पर जनता को गुमराह करने और गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है. सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क

0: has been tasked with submitting its detailed findings and funding requirements to Sanjeev Sanyal, a member of the Prime Minister's Economic Advisory Council, by the 31st of August this year. The Indian Cyber Crime Coordination Centre, or I4C, today signed an MOU with Reserve Bank Innovation Hub to strengthen collaboration in combating cyber-enabled financial frauds and curtailing mule accounts across the banking and digital payments ecosystem. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah has said that the Narendra Modi government is working tirelessly towards building a cyber-secure Bharat. However, he emphasized that mule accounts remain a major challenge in curbing cyber crimes. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heat wave conditions over Rajasthan for tomorrow. Similar conditions are likely to prevail over Gujarat, Maharashtra and West Madhya Pradesh till tomorrow. In IPL cricket, Gujarat Titans were 51 for 2 in 7.1 overs against Sunrisers Hyderabad in Ahmedabad when reports last came in. Earlier, Sunrisers Hyderabad won the toss and opted to bowl. And in badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the second round of the Thailand Open at Nemobotra Stadium today. And that is the end of this news bulletin.
1: அடுத்த அறிவிப்பு தொடர்கிறது. ஆகாஷ்வாணி, நேரம் 8:10.
2: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது 100.1 மெகா ஹெர்ட்ஸ் ஆகாஷ்வாணி சென்னை எஃப்எம் கோல்ட்.
1: இப்போது முதல் மணி 8:45 வரை திரைகானம் ஒலிக்க கேட்கலாம். திரைகானம் தொடங்குவதற்கு முன்,
3: நமஸ்கார், மை ஹூ கைலாஷ் கேர் ஓர் ஆகாஷ்வாணி கே சபி ஸ்ரோதாவோ கோ மேரா பாரம்பார் பிரணாம் ஓர் பாரத் கி சேனா கோ சமர்ப்பித் யே மேரா கீத் பாரதிய சேனா ஜோ தீனோ சேனாவோ கோ சமர்ப்பித் ஹை ஹர் தேஷ்வாசி கோ சமர்ப்பித் ஹை तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूँ। मैं हूँ आपका कैलाश खेर।
4: अम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கில செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே லவ்லி நிகம். सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट, 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जाँच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है।

जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और

0: असामयिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
2: आईसीएआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
3: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 पैसे प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन, अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026

लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए के mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 만찬.
1: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गोयल। आज हम चर्चा करेंगे विकसित भारत जी राम जी के बारे में। हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: आशुतोष जी। जैसा कि ये विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसके बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था, दिसंबर में इस बात की घोषणा करी थी, तो क्या मानते हैं किस तरह से ये एक गेम चेंजर के रूप में आएगी?
2: गेम चेंजर इस सेंस में इसको कहना चाहिए कि जो खामियां थी, लंबे अरसे से चली आ रही थी लगातार खामियां, करप्शन हो रहे थे, लोगों के नाम गलत तरीके से चढ़ा करके कोई और पैसे वसूल रहा था, ये खामियां दूर होंगी। और जो विकसित भारत की सोच है कि अगर देश का विकास होना है तो जो भी निर्माण हो वो स्थायी हो, उस दिशा में ये जी राम जी की पहल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी दिशा में जाएगी। और अगले 5-7 साल में जब इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा, तब ये पता चल जाएगा कि जिस सोच के साथ इसे जमीन पर उतारने की कोशिश हुई है वो पूरा हो गया, और सही तरीके से अगर इसका कार्यान्वयन हुआ तो मुझे विश्वास है कि ये पूरा होगा।
1: जी, चलिए सुनते हैं हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कहा और कब से लागू हो रही है इसके बारे में उन्होंने बताया।
3: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को, बहनों को अब 100 नहीं, साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे। अधूरे काम अभी 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। अभी व्यापक पैमाने पर राज्यों से सलाह मशवरा करके नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अधिकतम राज्यों को 6 माह का समय रहेगा अपेक्षित तैयारी के लिए।
1: आशुतोष जी, जिस तरह से मंत्री जी ने भी कहा कि 6 महीने का समय दिया गया है तैयारी करने के लिए, लेकिन जब तक, जैसे कि 1 जुलाई से ये प्रावधान लागू होने हैं और तब तक मनरेगा के प्रावधान ही लागू रहेंगे, तो इसमें क्या कहीं कोई संशय है या कुछ इस तरह की बात है जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा या राज्यों से कोई अपेक्षा समर्थन नहीं मिल पा रहा?
2: जो विपक्षी राज्य हैं उनकी ओर से ये सवाल उसी समय से उठने शुरू हुए थे कि इसमें अगर 40% राज्यों को खर्च करना पड़ेगा तो राज्यों पर भार पड़ेगा और वो समस्या होगी। तो विपक्षी राज्यों की ओर से ये समस्याएं आ रही, वो उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जो दूसरी बातें हैं इसमें कि देखिए, जो नए प्रावधान इसमें किए गए कि भाई आप 125 दिन की का गारंटी देंगे, आपकी जो निगरानी व्यवस्था होगी, निगरानी तंत्र होगा, वो बिल्कुल जमीन पर मौजूद होगा। अगर 1 सप्ताह का साप्ताहिक कोई काम होता है तो सप्ताह खत्म होते ही उसे तत्काल पेमेंट होना चाहिए, इस तरीके की तैयारियां। और प्लस ये कि आप एक तैयारी इस लिहाज से करते हैं कि हमें किस तरीके के कंस्ट्रक्शंस करने हैं, क्योंकि इसमें पंचायतों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उसको इसमें समाहित किया जाना है, तो इस तरीके की तैयारी की बात थी। देखिए, अदरवाइज तो क्या है, 2005 से ही ये योजना चल रही थी तो चल ही रही थी। जो बदलाव हुए उसको देखते हुए जो तैयारी राज्यों को करनी है, उस लिहाज से जो ग्रामीण विकास मंत्री ने जो बात कही, मुझे वही लगता है इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है।
1: 1 जुलाई से इस तरह की योजना लागू हो रही है और इसमें जिस तरह से आपने भी बताया कि इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, नए कामों को भी, और साथ ही साथ समय से भुगतान को सुनिश्चित किया गया है, और अगर भुगतान अगर समय से नहीं होता तो क्या किसी तरीके का उनको हर्जाना भी मिलने की इसमें कुछ प्रावधान है?
2: जी बिल्कुल, ये अच्छी बात इसमें है, क्योंकि देखिए जो पुराने रिकॉर्ड जो बताते हैं मनरेगा के टाइम से जो चलती रही थी बात, उसमें ये समस्या शुरुआत से आ रही थी कि काम कर लिया, भुगतान नहीं हो रहा है, महीनों महीनों पड़े हुए हैं, और फिर देने के लिए जो है सो मजदूर को रिश्वत देनी पड़ रही है, इस तरीके की समस्या। तो इसमें बकायदा ये इंतजाम किया गया, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में होगा ना कि आपने आज से काम शुरू किया और अगले 20 दिन तक पहले काम किया।

0: ये रिकॉर्ड में है, और उसमें प्रोविजन है कि आपको जो है कार्य संपन्न होने के बाद मैक्सिमम जो है 15 डेज का दिया गया है कि उसके बीच में आपको भुगतान करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से हर्जाना उसमें जोड़ना होगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि तभी तंत्र ज्यादा मजबूती से काम कर पाता है जब उसमें एक जवाबदेही तय कर दी जाती है। तो यहाँ जवाबदेही की गई है।
1: जवाबदेही की आपने बात करी, तो इस बारे में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ जानकारी दी है।
2: अनुच्छेद भारत जी राम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने ही अपने बजट में 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने अपने बजट में विकसित भारत जी राम जी को लागू करने के लिए प्रावधान किया है, और केंद्र और राज्यों की कुल राशि अगर जोड़ ली जाए तो 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मजदूरों को भुगतान DBT के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर में जो अकाउंट है उसमें किया जाएगा। कोशिश होगी कि 3 दिन के अंदर हो, लेकिन अधिकतम 15 दिन के अंदर प्रक्रियाएं पूरी करके उनके खाते में पैसा आ जाए। 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आया तो हमारे मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र भी होंगे। जो देरी से देंगे तो उस पर एक निश्चित राशि अलग से देनी पड़ेगी, और मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा।
1: जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि अगर मांगने पर रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो कहीं ना कहीं कोई संशय की गुंजाइश तो बनती नहीं है। ये योजना पहले की योजना से किस मायने में अलग देखते हैं आप?
0: दो तीन बड़े अंतर हैं अगर सिर्फ प्रावधान की बात करें। प्रावधान की सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर उसमें 100 दिन की गारंटी थी तो इसमें 125 दिन की गारंटी है, और राज्यों को ये तय करने का अधिकार दिया गया कि आप कौन सा लीन पीरियड मानते हैं और कौन सा ऐसा पीरियड मानते हैं जिसमें काम नहीं दिया जा सकता। ये दोनों चीजें हैं उसमें। रेनी सीजन है, अब पता चला उस बीच में कोई रोजगार मांगने आ जाए तो कैसे देंगे आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होना है वहां पर। तो इस तरीके की छूट भी है राज्यों को। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि ये थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी कई जगहों से कि काम मांगने पर भी काम नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि इंतजार करवाते थे वो जो जिलाधिकारी होते थे, वो ये देखते थे कि भाई अभी काम शुरू करना है तो फिलहाल इसको टाल कर रखो, जो एक होता है ना कि फिलहाल आप इसको नजरअंदाज करो, फिर कोई काम शुरू होगा तो फिर महीने भर बाद 45 दिनों बाद एक कोई काम शुरू हो रहा है तो उसमें जोड़ने की कोशिश होती थी। इसमें जो अच्छी बात है नई स्कीम में क्या है कि विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत सारे कार्य राज्य सरकारों के भी चल रहे होते हैं। गांव में हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोई और काम हो रहा है, बहुत तरीके के काम, कोई तालाब खुदाई की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको इससे जोड़ा जा सकता है। जो इन्होंने बात कही कि केंद्र और राज्यों के पैसे मिला करके केंद्र ने 95,000 करोड़ रुपीज का इसमें प्रोविजन किया है, और राज्यों की ओर से जो 40% की बात थी उसको जोड़ करके उन्होंने वो कहा। अब इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति जो अनस्किल्ड लेबर जिसकी बात हम करते हैं, क्योंकि इसमें अनस्किल्ड लेबर को ही मिलता है, वो कोई काम मांगे और उसे काम नहीं दिया जा पाए, मुझे ऐसी कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है। फिर भी अगर कहीं इस तरीके की स्थिति होती है तो मुझे लगता है वहां जरूर जानबूझकर लापरवाही हो रही है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि बदलाव दिखेगा मुझे लगता है
1: जी। क्या इसमें राज्य सरकार या पंचायत के स्तर पे भी जो कुछ कार्य होते थे उसमें इसमें समाहित किया गया है उनको, और जिससे कि आपने भी जैसे बताया कि बहुत सारे कार्य अलग अलग तरीके से चलते रहते थे लेकिन सबको एक समाहित करके जिसमें कि धन का आवंटन की कमी ना है, क्योंकि एक बड़ा भाग इसमें बजट में भी इसके लिए प्रस्तुत किया गया है।
0: यही बात जो राज्य विरोध कर रहे थे इस साल, उनको यही समझाने की कोशिश हुई थी कि 40% ये आप पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ रहा है। अगर कोई भी निर्माण हो रहा है राज्य में तो वो राज्य के फायदे के लिए है या नहीं, तो राज्य के लिए फायदे के है तो राज्य उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं करेंगे। राज्य के लोगों के फायदे के लिए है कि नहीं कि उन्हें रोजगार मिलेगा, तो फिर राज्यों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी और जवाबदेही, ये दोनों चीज इसमें समाहित किया गया है, जिससे मुझे लगता है ये ज्यादा प्रभावी होगा, जमीन पर ये दिखना शुरू होगा
1: जी। इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एक बड़ी धनराशि इसके लिए रखी गई है और इसमें कौन कौन से कार्य कराए जा सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी दी है।
2: 1,51,000 करोड़ से ज्यादा की विशाल धनराशि से गांव में इंफ्रा के सारे काम व्यापक पैमाने पर होंगे। जल संरक्षण के काम, गाँव में अधोसंरचना के काम, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क जो जरूरी है सब किए जा सकेंगे। आजीविका मूलक काम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी हो, FPO हो, उनके लिए वर्किंग शेड जैसी कई अधोसंरचनाएं भी बनाई जा सकेंगी, और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए भी संरचनाएं जैसे रिटेनिंग वाल वगैरह अगर नदी के किनारे

0: अरे कोई गांव है या जहां पानी भरता है तो वैसे काम भी लिए जा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी साथी है उनको पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को भी बढ़ा के 6 से 9% कर दिया गया है। मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज हो रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरा करने में यह योजना मील का पत्थर साबित होगा।
1: जैसे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित गांव बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या गांव के आसपास ही उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए समर्पित होगा या उसमें कहीं दूरी का भी कोई प्रावधान नहीं है?
2: जो इसकी मंशा है वो यही है कि गांव के आसपास जो जहां के रहने वाले हैं उसके आसपास ही रोजगार मुहैया हो। और चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहे होते हैं हर जगह, कार्य और नए शुरू किए जा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बात कही कि जल संरक्षण, अब जल संरक्षण आज देश के की प्राथमिकता में शामिल है, तो जल संरक्षण को सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा एक खूबसूरत बात इसमें जोड़ी गई है कि आपदा से निपटने की तैयारी। अब देखिए, आपदा से निपटने की तैयारी कई मिनिस्ट्री के लेवल पे चल रही है, जिसमें होम मिनिस्ट्री भी शामिल है और उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री शामिल है, उसमें वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री भी शामिल है, केंद्र से लेकर के राज्य तक, यानी एक पूरे सहयोग की बात होगी। हर मिनिस्ट्री केंद्र से लेकर के राज्य तक एक दूसरे से सहयोग करके ऐसी अधोसंरचना का, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा होगा जो स्थायी होगा और वो हमेशा के लिए देश के काम आएगा। तो जाहिर तौर पर उसमें गांव तो शामिल होंगे ही। आप ये मान के चलिए कि अधिकतर जो इसमें लाभ मिलना है वो गाँव को मिलना है। शहरों में तो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, गांव में ही समस्या सबसे ज्यादा खड़ी होती है, जहां राज्य सरकार भी कई बार हिचकिचाती है और केंद्र सरकार से जो पैसे जा रहे हैं कई बार वो खर्च नहीं हो पाते हैं ढंग से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस स्कीम के जरिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा गाँव को होगा। और इसीलिए बात हो रही है ना कि गाँव, हम लोग तो हमेशा से बोलते रहे कि भारत गाँव का देश है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते भी रहे हैं। गाँव विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, यही इसकी मंशा है।
1: और शहरों पे भी जो ग्रामीण का जो बोझ होता है, अचानक से शहरों पे शहरीकरण का बोझ है, शायद उसको भी कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र का भी विस्तार होगा। एक महत्वपूर्ण जो मैं इसमें बात देख रहा था कि 5 किलोमीटर से अगर दूर होगा कोई कार्यस्थल तो उसके लिए मजदूरों को कुछ अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा, ये शायद इस योजना को काफी आकर्षक बनाता है।
2: जी बिल्कुल। अब अगर कोई गाँव का एक मजदूर, आप उसे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक काम दे रहे हैं और दिन भर की दिहाड़ी के हिसाब से, जो चूंकि इसमें मिनिमम वेजेस का ही ये एक हिसाब होता है
1: जी,
2: उस पे तो वो बहुत आकर्षक कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात देखिए, जो पहली योजना थी मनरेगा, उसमें भी ये बात थी कि उस घर के आसपास, लेकिन उसमें कोई एक डिस्टेंस को डिमार्केट नहीं किया गया था कि हाँ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो आसपास आप कुछ भी बोल सकते थे, 10 किलोमीटर भी बोल सकते थे। तो ये बताना कि भाई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में हम, ये बहुत आकर्षक बनाता है। तो एक तो 125 दिन की गारंटी, दूसरा पेनल्टी अगर उनको समय पर भुगतान नहीं किया जाता है उनका जो वेतन है, और तीसरा गांव के बिल्कुल आसपास, ये तीनों चीजें हैं जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाएगी।
1: जी, क्योंकि ये एक अधिनियम ऐसा है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं का भी समन्वय है, तो एकल योजना बहुवित्त पोषण दृष्टिकोण को इससे काफी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्य सरकार पे अलग योजनाएं चल रही हैं उसी मतलब की, और केंद्र सरकार भी इसी तरह की कोई योजना चला रही है, और शायद गांव के लेवल, पंचायत लेवल पे भी, स्थानीय स्तर पे भी इस तरह की कभी कभी योजनाएं आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समावेशीकरण हो जाएगा तो उसमें बेहतर होगा कि एक तरह की योजना जिसकी कि खासतौर पर जरूरत है ग्रामीण के क्षेत्रों को, उसका पूरा भरपूर लाभ मिल सके।
2: बिल्कुल, यही मंशा है, कन्वर्जेंस। जितनी स्कीम चल रही है उसका कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी क्या है कि आप पैसे को सही तरीके से खर्च कर पाएंगे और सही तरीके से निर्माण भी हो पाएगा। ये बहुत जरूरी इसका हिस्सा था और वही जरूरी है देश के लिए हर तरीके से।
1: चलिए, तो मोटे तौर पे ये मान लिया जाए कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलेगा, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य इसमें लागू किए जा सकेंगे। 100 दिन के मुकाबले 125 दिन का रोजगार इसमें सुनिश्चित किया गया है और साथ ही साथ भुगतान भी समय पर मिले इसकी गारंटी भी की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो शायद इस योजना को पहली योजना से ज़्यादा आकर्षक बनाती हैं और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी तय करती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आशुतोष जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज़ ऑन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में देश से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। कल जयपुर से मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित की गई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस करेगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरा शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देशभर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच मुंबई शेयर बाजार में आज लगभग 2% की गिरावट आई। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा और श्वेतपर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा।

0: tournament campaign with a hard-fought win in Bangkok today. Top seed Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty defeated Indonesia's unranked pair of Putra Enovensia and Bagas Maulana to enter the men's doubles second round. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी गुरुवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने स्थानीय चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफे की मांग को खारिज किया। कहा 20% सांसदों का आवश्यक बहुमत हासिल नहीं हुआ। इसराइल की संसद नेसेट ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमलों के आरोपी फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष सैन्य न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला कानून पारित किया। नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में एक यात्री बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत और 20 घायल। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती है।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
1: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयन से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ब्रिटेन में स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी की हार के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है।

और आज उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के पहले सदस्य को खो दिया। आवास, समुदाय और स्थानीय सरकार मंत्री मियाट्टा फाहनबुले ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने श्री स्टार्मर से देश हित में सही कदम उठाते हुए पद छोड़ने की समय सीमा तय करने का आग्रह किया। उधर श्री स्टार्मर ने पद छोड़ने की बढ़ती मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने आलोचकों को गलत साबित करने का संकल्प लिया। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि इंग्लैंड

0: खबरों में कहा गया था कि इंग्लैंड और वेल्स में हाल में हुए स्थानीय चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 60 से अधिक लेबर सांसद श्री स्टार्मर से पद छोड़ने का आग्रह कर रहे थे। कई लेबर सांसदों ने सार्वजनिक और निजी तौर पर चिंता व्यक्त की है कि श्री स्टार्मर का नेतृत्व अगले आम चुनाव से पहले पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। इसराइल की संसद नेसेट ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमलों के आरोपी फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष सैन्य न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए विधेयक पारित कर दिया है। खबरों के अनुसार विधेयक के पक्ष में 93 मत पड़े और विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। एक रिपोर्ट।
1: ये कानून इसराइल की सैन्य न्याय प्रणाली के अंतर्गत विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें 7 अक्टूबर के हमले के दौरान इसराइल के सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए और तब से हिरासत में रखे गए लगभग 300 कथित आतंकवादियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस कानून के तहत न्यायाधिकरण को नरसंहार, इसराइल की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने, युद्ध छेड़ने, युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने और आतंकवाद सहित विभिन्न आरोपों में आरोपियों पर मुकदमा चलाने का अधिकार होगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को लगभग 5,000 से 6,000 फिलिस्तीनी आतंकवादी जमीन, समुद्र और हवाई मार्ग से इसराइल में प्रवेश कर गए और गाजा सीमा के पास कई स्थानों पर समन्वित हमले किए, जिनमें मुख्य रूप से हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के सदस्य शामिल थे। इन हमलों के परिणाम स्वरूप लगभग 1,200 लोगों की मौत हुई और 251 बंधकों का अपहरण किया गया, जिनमें से कई को गाजा ले जाया गया। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
0: इसराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हाकाबी ने कहा है कि ईरान युद्ध के दौरान इसराइल ने आयरन डोम मिसाइल रोधी बैटरी और उन्हें संचालित करने के लिए कर्मियों को संयुक्त अरब अमीरात भेजा था। उनके इस बयान से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। दोनों ही देश लंबे समय से ईरान को संदेह की नजर से देखते रहे हैं और संघर्ष में नाजुक युद्ध विराम अभी भी कायम है। नेपाल के लुम्बिनी प्रांत के अर्घाखांची जिले में आज एक यात्री बस दुर्घटना में 4 महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार लगभग 30 यात्रियों को ले जा रही बस सुपा देवराली मंदिर की तीर्थयात्रा के बाद पर्वत जिले लौट रही थी, तभी पाणिनी ग्रामीण नगर पालिका 8 के दुर्गाफांत कुड़ेले में वे सड़क से उतरकर लगभग 100 मीटर नीचे गिर गई। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 9 और मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार खसरे के पुष्ट मामलों और खसरे से संबंधित लक्षणों में मरने वालों की कुल संख्या अब बढ़कर 424 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में हुई मौतों में से 3 खसरे के पुष्ट मामले थे, जबकि 6 बच्चों की मौत खसरे जैसे लक्षणों के साथ हुई। हंता वायरस के प्रकोप से ग्रस्त जहाज से निकाले गए स्पेन के एक यात्री की इससे संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि हंता वायरस से संक्रमित पाए गए यात्री को मैड्रिड के एक अन्य सैन्य अस्पताल में क्वारंटाइन में रखा गया है। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाला है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र इरवियन सहा और बगास मौलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी तथा महिला डबल्स में ऋतु पर्णा और श्वेता पर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी गुरुवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने स्थानीय चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफे की मांग को खारिज किया, कहा 20% सांसदों का आवश्यक बहुमत हासिल नहीं हुआ। इसराइल की संसद नेसेट ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले के आरोपी फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष सैन्य न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला कानून पारित किया। नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में एक यात्री बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत और 20 घायल। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani.

0: वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by

0: தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न राज्य स्थानों पर

0: भेजी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को NEET UG परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित TV के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे से पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को TV के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने SP वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान TV के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित रहे। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। कगिसो रबाडा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरी बार भारतीय महिला लीग का खिताब जीत लिया है। सेथु FC और सेसा फुटबॉल अकादमी के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ होने के बाद ईस्ट बंगाल ने खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ஒழுத்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இன்று இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है. इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है. नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी.
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो. इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी.

0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी की सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी की सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहनों की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल की भी आधिकारिक पुष्टि हुई है। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरमत दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ஒழித்த பாடலுடன் நிறைவு பெற்றது இந்த நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சி. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी

0: और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी की सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी की सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलिवफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 दिन की अहम शिखर वार्ता होगी। ये शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े संकट के कारण अमेरिका और चीन के संबंधों पर दबाव बढ़ गया है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरों मध्य बंद किए जाने और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी से चीन के तेल आयात और व्यापार पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सांगली में कल दोपहर दीवार गिरने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनहानि की खबर से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहन की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इको सिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency NTA on the 3rd of this month. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of the flow test with the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Karagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected S.P. Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to the UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit there will be talks on energy security.
0: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के
3: ड्यूरिंग द विजिट टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एज वेल डिस्कशंस विल टेक प्लेस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी अपार्ट फ्रॉम दिस देयर विल बी आल्सो द नॉर्डिक समिट अलोंग विद द विजिट्स फ्रॉम नॉर्वे स्वीडन इटली एंड द नीदरलैंड्स दीस कंट्रीज

0: நேர்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது இனியராகும். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பண்டிட் ஹர்விந்தர் சர்மா அவர்களின் சித்தாரிசையும் ஜக்ஜித் சிங், சித்ரா சிங் ஆகியோரின் பாட்டும் இடம்பெற கேட்டோம். பண்பலையில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே வைஷ்ணவி. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
3: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी।

0: जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021

0: मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जाँच करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG, 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that the special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency NTA on the 3rd of this month. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam.
3: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है।
4: We have handed over this matter to the Central Bureau of Investigation for inquiry and all those involved in such wrongdoing will be sent to jail so that students' future are not adversely affected in any way. Along with this, we will conduct the examination again in a completely fair manner with no irregularities of any kind and no additional fee will be charged for the re-examination.
3: Fees nahi charge karenge.
2: The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of the flow test with the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Karagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs have elected S.P. Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has appealed to the people of the state for the practical implementation of Prime Minister Narendra Modi's call. He urged citizens to reduce fuel consumption and avoid unnecessary purchases of gold. The Chief Minister of Yogi Adityanath directed that the fleets of the Chief Minister, ministers and others

0: शिक्षण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस करेगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए आज होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं, तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं को प्रभावी रूप से संभाला है और ये सुनिश्चित किया है कि जनता पर इसका न्यूनतम बोझ पड़े। सीआईआई वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत ने घरेलू उत्पादन को 36,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन कर दिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। श्री पुरी ने कहा कि भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल और एलएनजी तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार मौजूद है और आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जाँच करने को कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। प्रतियोगिता में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।